जिन कर दिस ज्ञानन जिने तिने जन निहालिया खसम छोड़ तू चल गए तू बेसे गुजारिया सतगुरु हर कोई ठग ने तिने विचारिया कर कृपा पार तारिया कर कृपा पार तारिया।

सबको आके अपने जिसने सुतन के लिए है कि काया तू अपना पहले का संगिए जरना नहीं है तो जागता ना इत कर मिलिए मंदा किसने आके अपने खेत पूछिए।

यार रंग से रंग रहे जो पी कर जाए परवा नहीं किसे तेरे वाज सच्चे नहा दरवाट पर कर तुंगा जब बैदे का गाहे दीवान को कलम का हमत मेर काले लेखा पीर छुटे नान वाज पे।

और जिसने सुपये सोसाहन सिरास बनिये दिलिता पाये अपना साकाल बुरी क्यों कालिये मंदा मुला की चई दे लंबी नदर निहालिये जो साहिब लाला हालिये तेरे पापा साता दिये किछला हे ऊपर तालिये किछला हे ऊपर।

कल्पना जब हरता के पारावार आक्रय सक्रिय आक्रय मारे इतना अंगलित जिन्हें तुरे चरित्र से आ

कोई न जाने तुमरा अंत उचेते सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो।

आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो, हुक्म अनुसार जीवन जौन दी समर्था बख्शो, अखर वादा घाटा भुलचक माफ कर।

भगवान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पर भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम अपारा सब दयावहीं तुझ जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर दया बहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व नरंतर जी हरे को पुरख समाणा एक दाते एक पे खारी जी

कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सवनी ते आया जिस नौ कृपा करहें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदया।

हृदय उचरै कर तारै, गुर गोहर दरियाओ पलक डुबंत तारै। नानक कुल निमल अवतरयो, गुण कर तारै उचरै। गुर अमरदास जिन सेवयो, तिन दुख दरिद्र पर हर परै। चित चितवो अरदास कहूं, पर कह बे ना सकूं। सर्व चिंत तुझ पास,